नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक्षमवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 24 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातः

0: यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को है समाचार अब दिल्ली से होंगे।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि

ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर

0: द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC U17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले समूह स्वर में एक मातृवंदनी, देशभक्तिपूर्ण मातृवंदना, प्रसिद्ध कवि रामावतार त्यागी की रचना है। और भी दूं मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। आइए सुनते हैं ये देशभक्तिपूर्ण मातृवंदना।

अभी आप सुन रहे थे ये भजन आवाज मोहम्मद रफी की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए एक और भजन शंकर महादेवन के स्वर में।

शंकर महादेवन के स्वर में शनि जी की आराधना भी आप सुन रहे थे। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के समापन में किशोर ठाकुर और रंजना ठाकुर के स्वर में साईं बाबा का भजन।

0: इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद खेती किसानी में किसान भाई सुनेंगे बकरी पालन से लाभ। इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ आज आप सुनेंगे 393वीं कड़ी। गायक ए हरिहरन, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। 6:50 पर चिंतन, सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में एक वार्ता होगी खजुराहो के अनछुए पहलू, वार्ताकार होंगे शिव नारायण तिवारी। 7:30 पर फिल्म संगीत, सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। सुबह 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग, कलाकार होंगे चिंतामन राय। 9:30 पर आप सुनेंगे जब आप गुनगुना उठे, श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा 10:05 पर मिश्रित संगीत में आप सुनेंगे गीत गजल भजन फिल्म गीत और फिल्मी धुन। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा। 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1:00 महिला कार्यक्रम महिला सभा आकाशवाणी भोपाल से आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में, 1:30 पर रीवा की ही प्रस्तुति में लोक संगीत, 1:45 पर आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में सुगम संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर भोपाल केंद्र से युगवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में, 5:30 पर फिल्म संगीत, 6:00 सुगम संगीत में अनुराधा पौडवाल व चंदन दास के स्वर में कुछ गजलें हम आपको सुनाएंगे। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगे शैलेंद्र दुबे। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोक रंजन। आज की नसीहत में, आज की सीख में विषय होगा छाती पे धरे फिरत। लोक रंजन कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। 8:00 भोपाल केंद्र से सुर्खियों में, 8:15 पर फिल्म संगीत, 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से स्पॉटलाइट, 9:30 पर दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती, 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए खेती किसानी। आज का विषय है बकरी पालन से लाभ, लीजिए सुनिए खेती किसानी।
1: भैया देखो, अपने देश में प्राचीन काल से अपने किसान भैया या पंच भैया पशुपालन पे बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं और पशुपालन करके उनने अपने जीवन यापन का आगे बढ़ाव है। खेती किसानी के संगे संगे अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और जो उत्तर प्रदेश को क्षेत्र है, इतने पे खेती किसानी के संगे पशुपालन अपने पंच भैया मुख्य रूप से करते हैं, जिनमें गाय पालन है, भैंस पालन है और बकरी पालन है। आज हम अपन बता रहे हैं कि बकरी पालन अपने जो पंच भैया करवो चाहते हैं भी कैसे का करें। कैसे कि देखो, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो बहुत गरीब हैं, छोटे किसान हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं। तो हम उन्हें जो बता दें कि जिन्हें अगर कम लागत लगा के या थोड़ी खेती उनके पास

0: से तो भी बकरी पालन को धंधा जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। कैसे ई काम में कम पैसा लग के अधिक मुनाफा कमाओ जा सकते हैं। बकरी पालन में बहुत ज्यादा खर्चा अपने पंचोहियन का नहीं लगते और जल्दी इसे आय होने लगते। बकरी पालन में अपने पंच भैया एक बात को ध्यान रखें कि जब उन्हें बकरी पालन करने हैं तो भी कैसे क्या करें, तो अपने क्षेत्र में 2-3 नस्ल की बकरियां जो हैं वे अच्छी मिलत है और ज्यादा उत्पादन दी थे, जैसे जमुनापारी है, बरबरी है और अपने देसी नस्ल की बकरी अपने बुंदेलखंड में ज्यादा अच्छी तरह से पैदावार इनकी होते। बकरी पालन के लिए अपने पंच भैया सबसे पहले तो जो काम करें कि देखो जहां उन्हें रखने हैं एक गुबाड़ू बना लें और रात के ठंड पानी और गर्मी से बचाव के लाने उनके रख रखाव की समुचित व्यवस्था हो वो जरूरी है। एक बकरिया से कई बच्चा पैदा हो जाते हैं। आजकल देखो मांस की भी बहुत ज्यादा मांग है, तो उनमें भी अपने बकरी पालन से भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने भैया का देखो चारे या पत्ती की बहुत ज्यादा कमी हो सकते है, तो उनके लाने दिक्कत भय अपने पंच भैया बकरी पालन कर सकते हैं। कैसे कि अपने देखी जो है 70% जनसंख्या गांव में रहा थे और बहुत सारे किसान भैया देखो बहुत छोटी किसानी कर रहे थे या भूमिहीन कृषक हैं या बेरोजगार हैं, तो वे बकरी पालन करके अपने परिवार को भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकते थे। बकरी पाल के वे दूध ऊन चमड़ा और जो खाद निकलते वो सब बेच सकते थे और वो अपने परिवार के लाने पैसा इकट्ठा हो सकते थे। बकरी के लाने सबसे पहला तो इन्हें जो देखना है कि ऐसा क्षेत्र है अपनो इतने पे कम वर्षा होते है और इतने को मौसम अनियमित रहा थे, तापमान औसत से अधिक रात है जिनमें की बकरी अपने पाल सकते थे और जिन्हें आप बकरी पालन की रुचि है तो वे देसी बरबरी या जमुनापारी नस्ल की बकरियां पालें, जे एक दिन में 1.5 किलो से कम दूध देके 1 किलो 1.25 किलो और 1.5 किलो तक दूध इनमें निकले थे। ये बकरियां 10 महीना में इनकी बच्चा तैयार होके 15-16 महीना में ये ब्यावे के लायक हो जाते हैं या दूध देने लगते हैं। हम अपन को बता दें कि इनके जो बच्चा हैं यानी जो बकरा हो थे उनको वजन लगभग 1 साल में 25 से 28 किलो तक हो जाते हैं और बकरिया को वजन 20 से 22-23 किलो तक हो जाते हैं। दूध तो देते ही है अपने पंच भैया ये जो बकरियां पालत है वे 50% बकरियां जो है वे जोड़वा बच्चा देती है और उनमें से लगभग 50% जो बकरियां हैं वे एक बच्चा देते हैं। इनके बीच में अपने जिनने बकरियां पाली हैं ब्यावे के 2-3 महीना के अंतर से फिर से बकरियां गाभिन हो जाते जो 5 महीने बाद फिर ब्या जाते। अपने पंच भैया एक बकरिया से सब खर्चा निकाल के साल में एक बच्चा से या एक बकरिया से 600 रुपया के आसपास तक मुनाफा कमा सकते हैं। अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश को सबसे बड़ो बकरी या भेड़ को बाजार जो है वो कालपी के पास एक जगह है चौरा, उतर हर मंगलवार को बाजार लगते है जहाँ अच्छे से अच्छे नस्ल की बकरियां उतर मिलत है। अपने जन पंच भैया का बकरियां पाल रहे हैं वे उतर जाके या अपने आसपास के क्षेत्र में जिते उन्हें अच्छी नस्ल की बकरियां मिलत है ऐसी बकरियां पालें जो दूध अधिक दें और बच्चा जिनके ज्यादा जुड़वा होते जिससे कि एक साथ उन्हें कई लाभ मिल सकते हैं। तो जो भैया अपने बकरियां पाल रहे हैं तो वे ध्यान रखें कि अपने अच्छी नस्ल की बकरियां पाल के भी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
1: हमारे किसान भाई अभी खेती किसानी में सुन रहे थे बकरी पालन से लाभ, इस विषय पर जानकारी। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई जरूर लाभ लेंगे और अच्छी नस्ल की बकरी पालन से अधिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए श्री राम चरित मानस गान का संगीतमय पाठ। आज 393वीं कड़ी हम आपको सुना रहे हैं। गायक हैं ए हरिहरन, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं। उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ, गायक ए हरिहरन और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। श्रोताओ, अभी मानस गान में आपने ए हरिहरन को सुना।

0: लीजिए, आकाशवाणी से अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: साध्य और साधक का अटूट संबंध है। किसी भी साध्य को प्राप्त करने के लिए लगन, मेहनत और साधनों की नितांत आवश्यकता होती है। आज के वैज्ञानिक युग में सुख और आराम के अनेक साधन मौजूद हैं। साधनों से शारीरिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, पर जीवन का वो आनंद नहीं जिसके लिए हम संसार में आए हैं। जीवन के वास्तविक आनंद अर्थात मानसिक शांति और संतुष्टि की भावना की प्राप्ति के लिए तो साधना अर्थात प्रयत्न या कोशिश की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। तरह तरह के आधुनिक साधनों से मनुष्य का भौतिक जीवन तो सुखकर हो सकता है, परंतु ये समस्त सुख मनुष्य को मृत्यु से नहीं बचा सकते। अतः साधनों की नहीं, साधना की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रति अंतरंग प्रेम, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना, प्रकृति से लगाव, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम इत्यादि भावनाएं हमें आंतरिक आनंद की अनुभूति कराती हैं। किसी नन्हे से पौधे को लगाएं, उसे बढ़ता फलता फूलता देखें तो हमारा मन निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति करेगा। भावनाएं हमें आनंद के साथ मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती हैं। यह हमारी मातृभूमि ही है जो हमें जीवन से बांध कर रखती है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनेक स्थान हैं जिन्हें देखकर हमें आत्मिक शांति मिलती है। उस आनंद की तुलना भौतिक साधनों से प्राप्त सुखों से कदापि नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करें, हमारी इसी भारत माता को हरा भरा बनाए। ईश्वर भक्ति में निर्मल मन से लीन हो जाए तो जो आनंद प्राप्त होगा वो अवर्णनीय होगा। मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो तभी वो साधना कर सकता है। साधना जीवन की परम संपदा है। जीवन परम रहस्यमय है, इसे कुछ लोग ही जान पाते हैं। जो ये रहस्य जान लेते हैं वे मनुष्य मात्र से ऊपर उठकर जीवन सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। जीवन का सत्य साधना ही है और संन्यास साधना का मार्ग। संन्यास से यहां तात्पर्य संसार का त्याग करना नहीं है। संसार में रहकर भी हम मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सन्यासी हो सकते हैं। त्याग की भावना जीवन को उन्नत बनाती है। जिन्होंने त्यागा है उन्होंने ही पाया है, त्याग कर ही पाया है, त्याग कर ही पाया जा सकता है। दुनिया एक सपना है। सपने दो प्रकार के होते हैं, एक खुली आंखों का सपना और एक बंद आंखों का सपना। अभी हम जो भी देख रहे हैं वो खुली आंखों का सपना है। आंखें बंद होंगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। रात में नींद में जो सपना देखते हैं वो बंद आंखों का सपना है। सुबह जब आंख खुलती है तो कुछ नहीं मिलता। संसार सुख भी इसी प्रकार खुली आंखों का सपना है। अध्यात्म अत्यंत सरस है। संत महात्माओं के प्रवचन में मजा नहीं, आंतरिक आनंद मिलता है। मजा एक हल्की चीज है। मजा तो बंदर का नाच दिखाने वाला मधारी भी ला देता है, परंतु गहन गंभीर साधु वचन आंतरिक स्थायी आनंद की अनुभूति देते हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण भगवान का चरित्र सुनने में जो आनंद का रसास्वादन मिलता है, उसकी तुलना संसार के किसी भी भौतिक सुख साधन से नहीं हो सकती। आनंद ऊंची चीज है। आनंद मनुष्य के हृदय से होकर आत्मा से उपजता है। जीवन का विकास विलास में नहीं, त्याग में निहित है, और यह त्याग साधना से आता है, साधनों से नहीं। आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता अनिवार्य है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कम मिनट होने को हैं, कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोहः

0: उपयुज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलम् ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्य राष्ट्रान् प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल

0: श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी नेशनल लोक अदालत। बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में 12.45 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्यप्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखे और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
0: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, पारा अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50

पीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनि विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्त्री विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 3 बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ, इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रूपये से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही दो टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा समर्थन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: वीडियो 444.6

0: हजार मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध में वार्ता खजुराहो के अंच में पहली। वार्ताकार हैं शिव नारायण तिवारी।
1: भैया हरो चंदेल राजाओं के मंदिर खजुराहो भर में नहीं है, ई राजाओं के मंदिर पूरे मध्य भारत में फैले हैं। ई मंदिरों को निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भवतो चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित आज खजुराहो में मंदिर ये तीन भागों में बटे हैं। ई मंदिर में पूर्वी समूह के मंदिर, पश्चिमी समूह के मंदिर तथा दक्षिणी समूह के मंदिर हैं, जो मंदिर पुरातत्व विभाग के द्वारा अंकित करे गए हैं। खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर में अभी भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों का कोई जानत नहीं है। उन मंदिरों के जावे के लाने न कोई रास्ता है न कोई गेल है। खजुराहो के पश्चिम समूह के एंगरे लड़ुआ महादेव नाम को मंदिर है, ऊके पहुंचवे के लाने कोनू गेल नहीं है। जो मंदिर अभी भी जंगल में अकेलो खड़ो है, जो मंदिर चंदेल राजान के दूसरे राजा बागपति ने बनवाओ तो, जो मंदिर भगवान शिव को मंदिर है, मंदिर के सामने छोटो सो तालाब भी है, जो मंदिर पूरा तिलिया पत्थर को बनो है। ई मंदिर की दीवारन में कोनो मूर्ति नहीं है। पूर्वी समूह के मंदिर में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिन्हें कोई जानत नहीं है। अगर आप बामन जवारी मंदिर के एंगरे खेतन में कोई ऐसो अवशेष पाए गए हैं जिन अवशेषन को देख के हम जो कह सकते हैं यहाँ पे बहुत से मंदिर हते थे। ई मंदिर लो जावे के लाने खेतन की मेयर से जाने आ है। दक्षिण समूह के मंदिर में अभी भी पुरातत्व विभाग के द्वारा तीन मंदिर चिन्हित करे गए हैं जिनके नाम हैं दूलादेव, चतुर्भुज, बीजा मंडल मंदिर हैं। बीजा मंडल की खुदाई अब नई नई भई है। मंदिर देखवे से ऐसो लगत है जो मंदिर खजुराहो को सबसे बड़ा मंदिर रह हुई है। ई मंदिर की खुदाई के जो शिलाखंड मिले हैं वो आज भी ई मंदिर के चारों ओर तरफ रखे हैं। मंदिर में बहुत नौनी सरस्वती देवी की मूर्ति मिली हती जो शायद पुरातत्व विभाग के म्यूजियम में रखी है। ई मंदिर के सामने और बगल में तीन मंदिरों के टीले और हैं जिनकी खुदाई अब नई नई भई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर शिव मंदिर रहुई है। मंदिर के सामने एक छोटो टीलो है जिनकी खुदाई नहीं भई है, शायद जो हल्को मंदिर नंदी मंदिर रहुई है। बीजा मंडल के बगल में एक और टीलो है जिनकी खुदाई नहीं भई है, जो मंदिर शायद पार्वती मंदिर रहुई है। बीजा मंडल मंदिर के सामने एक खेतन में एक और टीलो है। ई टीले खां देख के ऐसे लगत है कि जो भगवान गणेश मंदिर रहुई है। खजुराहो से लौड़ी चंदा क्षेत्र में बहुत से मंदिर बने हैं। ई मंदिर खां को जानत नहीं है। चंदला से पूरब की ओर 5 मील दूरी पर एक गांव है, ऊ गांव को नाम बंसिया बदौरा है। बदौरा के एंगे एक पहाड़ी में छोटी छोटी गुफाओं में मंदिर बने हैं। ये मंदिर चंदेल कालीन मंदिर से भी पुराने मंदिर हैं। कुछ मंदिर चंदेल कालीन हैं, जो मंदिर एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर खड़े हैं। इस चट्टान के ऊपर दो बड़े बड़े मंदिर हैं, शायद ये मंदिर शिव पार्वती के रह हुई है। मंदिर की दीवार पे भी खजुराहो मंदिर जैसी पुतरिया है। ये मंदिर अभी भी अच्छी अवस्था में है। पटपरा पे दो मंदिर और हैं जो एक एक के शिखर टूटे हुए हैं, दूसरों के पूरे शिखर हैं। इन मंदिरों के नीचे एक चंदेल कालीन बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन जो तालाब बांध जैसो दिखात है। ई तालाब के बांध के ऊपर एक और मंदिर जैसो बनो है। ये मंदिर नहीं है, लोग यहाँ चंदेलन को महल कहत है। ऐसे तालाब के एंग में 64 योगनी मंदिर भी है। ई मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है। ई में 64 देवी के छोटे छोटे आले बने हैं। आला देख के लोग 64 योगनी मंदिर कात है। 64 योगनी मंदिर के बगल में एक और मंदिर है, इसके गर्भगृह में भी कोनो मूर्ति नहीं है। शायद जो मंदिर बहनों को मंदिर रहुई है। ये सब मंदिर बदौरा गांव में है। बदौरा गांव तक सड़क है, लेकिन मंदिर के लाने कोनो सड़क नहीं है। ई मंदिर हाँ पैदल घूमो जा सकते।

0: ई गांव के दौरे में दो बड़े बड़े खम्भे जमीन में पड़े हैं। इन्हें देख के ऐसा लगत है कि जे दौरे के खम्भे रही हैं। खजुराहो के पूरब में पन्ना और अजयगढ़ के दो शहर हैं। खजुराहो से अजयगढ़ की दूरी 80 किलोमीटर है। अजयगढ़ में चंदेल कालीन बहुत बड़ा एक किला है। ई किले की दीवार अभी भी देखी जा सकत है। ई किले के ऊपर चढ़वे के लाने सरकार ने सीढ़ी बनवा दी है। ई के ऊपर तक मोटर कार नहीं जा सकत है। ई किले पे तीन मंदिर अबे और भी हैं, जो मंदिर भगवान शिव पार्वती के रही हैं। ई मंदिरन खां अजय पार भगवान के नाम से जानो जात। ई मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के अंतिम शासकों ने करो हुई है। ई मंदिरन की मूर्ति कला देखवे से पतो लगत है कि जो मूर्ति कला को अंतिम समय हतो तो जो मूर्तियां खजुराहो के अंतिम समय के मंदिरन से मिलत जुलत हैं। मंदिरन के सामने दो छोटे छोटे तालाब भी हैं। ई तालाबन में आदमी पानी में कमल फूल खिले हुए हैं। ई तालाबन के पानी यहाँ देख के ऐसो लगत है कि पहाड़ के ऊपर पानी कहाँ से आउत हुई है। ई किले के ऊपर चंदेल कालीन किले की दीवार अभी भी देखी जा सकत है। चंदेलन को 200 किलो कालीन जर हतो तो जो किलो चंदेलन ने प्रतिहार राजन से जीतो हतो, जो किलो मध्य भारत में सबसे बड़ा किलो मानो जात है। जो किलो पहाड़ के ऊपर 800 मीटर की ऊंचाई पर है। ई किले में तीन बड़े बड़े दरवाजे हैं। आज भी इन दरवाजन के अवशेष देखे जा सकते हैं। ई किले को इतिहास पुराणों में भी दर्शाओ गए है। ई किले पे कई छोटे छोटे तालाब भी हैं। जब इस किले में चंदेल राजा रात थे, तब गर्मी के समय में ठंडे पानी के तालाब और सर्दी के समय में गर्म पानी के तालाब हतो। ई किले के भीतर बहुत बड़ी नीलकंठ भगवान की विशाल मूर्ति है, जहाँ पर भगवान शिव जहर पिये देखे गए हैं। ई मंदिर में आज भी शिव के मुख से एक एक बूंद पानी गिरत है, जो एक अचंभे की बात है। ई किले को कालीजर कात हैं। कालीजर ई किले है इसे कात हैं, क्योंकि ई किले को काल भी नहीं जीत सकत है। ई कालीजर के 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और किलो है। ऊ किलो का नाम मड़फा है। ये किला टूटी हुई अवस्था में पड़ो है। जो किलो शायद प्रतिहार शासकन को रह हुई है। ई किले के ऊपर कोनो मंदिर आज साबित अवस्था में नहीं है। कुछ मूर्तियां पड़ी भई हैं। पहाड़ में बनाई गई भी कुछ मूर्तियां हैं, जहां पर शिव और बुद्ध की मूर्तियां देखी जा सकत हैं। कुछ मूर्तियां बुद्ध और जैन की भी टूटी हुई अवस्था में मिली हुई हैं। और एक और सुंदर मूर्ति है, जो भगवान शिव का नटराज रूप है। एक किले में टूटी हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। खजुराहो में कई स्थानों पर मंदिर और किलों का निर्माण कराओ गए तो ये स्थान है कालीजर चंदेलों का पहला किला। तो इसके बाद में इनका किला महोबा था, मड़फा भी इनके किला था। खजुराहो में सिर्फ मंदिर बने हुए थे। बदोरा, चंदेरी, अजयगढ़, ये सब चंदेल कालीन मंदिरों के यहाँ अवशेष मिले हैं, जिन तक आज भी सैलानी आसानी से नहीं पहुंच पाते।
1: अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध में बुंदेली वार्ता, खजुराहो के अनछुए पहलू। वार्ताकार थे शिव नारायण तिवारी। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। निजी प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले यशदास की आवाज में सुनैना फिल्म का ये गीत और संगीत रविन्द्र जैन का।

से थी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए आर पार फिल्म का ये गाना, और इस गाने में आवाज गीता दत्त की है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: भूते हैं खुदा हम बाबूजी भीड़ चलना।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त के स्वर में आर पार फिल्म का गाना। गीतकार थे मछली सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम यहीं रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे ट्रिप है? अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: गीता दत्त के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत और संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म थी भाई भाई। अब उठते हैं एक अंतराल के लिए।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, किसी ट्रिप में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शमशाद बेगम के स्वर में पतंगा फिल्म का गीत अब हम आपको सुना रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और श्री रामचंद्र के स्वर में ये गीत, और इस गीत को आपने सुना पतंगा फिल्म से। गीतकार थे श्री रामचंद्र, संगीतकार थे श्री रामचंद्र और गीतकार राजेंद्र कृष्ण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम रुकते हैं एक अंतराल के लिए।

0: अकाउंट्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
2: सा रे गा मा।
3: तुम भी गाओ।

0: सारे गा मा हाँ सारे गा
1: सारे गा सारे गा।
2: अच्छा तुम ये तो गाओ,
0: तेरे नैना
1: तेरे नैना तेरे।
2: तुम ऐसा करो ये गाओ मे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत के समापन में हमराज फिल्म का ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में हम आपको सुना रहे हैं। साहिल लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और संगीतबद्ध किया संगीतकार रवि ने।

0: श्रोताओ, हमेशा मुस्कुराते रहना यही जीवन है। दुख और सुख तो आते रहते हैं। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को ही समाचार प्रभात कुछ पलों में आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के अर्थद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित

0: संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश

0: में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाये, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Final Group B fixture at Suzhou in China yesterday. For India, Pritika Barman, Alva Devi St. Jam and Joya scored goals. Reaching the semi-finals of this tournament would guarantee India a spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Today, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. All the newspapers cover the nation's political fervour. Dada to replace Didi in West Bengal. Vijay meets governor again. Left on hold is the headline in Hindustan Times. While the Times of India writes, Bengal's Adhikari Suvendu to be state's first BJP CM. Uncertainty continues in Tamil Nadu government formation, cites the Hindu. The Indian Express quotes Rajnath Singh describing Operation Sindoor as short duration, deep penetration and high impact operation. Under the headline, Operation Sindoor showcased our capabilities, ethos. China admits backing Pakistan during conflict with India, writes the Pioneer. SC raps Punjab police for letting off drug sharks, cites the Tribune. US awaits Iran response to peace proposal as Gulf fighting flares up, reports the Indian Express. The Asian Age in an exclusive title for both US and Iran, peace the only choice, writes that the reality of the war is that the two major combatants need peace, and it is up to the US to rein in Israel and its action in Lebanon. The only hope is negotiations will begin in earnest during another 30-day ceasefire, as envisaged in the latest peace plan. And finally, Google explores major AI infra investments in India, notes Financial Express. Elaborating, tech giant Google is exploring investment opportunities in India across AI as well as of servers and drones. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to attend the swearing-in ceremony. Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Rajasubramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, गीत गुंजन लेकर मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेंद्र अहिरवार। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे माँ के ऊपर। श्रोताओं, माँ यानी ईश्वर का दूसरा स्वरूप। कल 10 मई को हम सभी मातृ दिवस के रूप में मना रहे हैं। कड़ी सरीखी धूप में माँ के पास पहुंचकर ही हमें छांव महसूस होती है। चाहे माँ से बातें करो या माँ को याद करो, उसका आंचल लहराता हुआ आता है और हमारे सिर पर छांव दे जाता है। मन को पता है भीतर ही भीतर जब माँ है तब तक सुख है, चैन है, अनकहा सुकून है। जीवन से लड़ने की ऊर्जा है, उसके बाद क्या, उसके बाद माँ की याद है। माँ यादों में बसती है, प्यार बनकर, डांट बनकर, स्वाद बनकर, दुलार बनकर, एक साथ कई जीवन जीती है हमारी माँ। कहीं चोट लगती है हमें तो वो जी लेती है वैद्य का जीवन, और इस तरह से हर चोट के साथ माँ याद आती है। चोट पर मरहम लगाते हुए भी माँ अपने आंचल से जैसे छुपा लेती थी बचपन में, किसी भी आफत आने पर माँ की गोद हमारा सहारा बनती थी। माँ का आंचल किसी भी आफत आने के बाद हर पीड़ा में याद आता था, याद आती है माँ। घर से दूर रहो तो माँ की कमी महसूस होती है। दुलार की अनुपस्थिति में घर में घुसते ही माँ की याद हमें आने लगती है। वे फिक्री हमें माँ देती है, माँ की स्नेहल मुस्कान की याद में

महसूस होती है। दुलार की अनुपस्थिति में घर में घुसते ही माँ की याद हमें आने लगती है। वे फिक्री हमें माँ देती है। माँ की स्नेहल मुस्कान की याद में, रोटी की गर्माहट में, सब्जी के स्वाद में, दाल की बघार में और चटनी के चटकारे में माँ हमेशा हमें याद आती है। हर निवाले के साथ माँ की रसोई का स्वाद याद आता है। माँ की मौजूदगी ही कृपा है। शायर कहता है, चलती फिरती हुई आंखों से अजां देती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। श्रोताओं, हम जहां भी हैं माँ बाप की बदौलत हैं। आइए उन्हें प्रेम करें और उनके आशीर्वचनों से हम हमेशा आगे बढ़ते रहें।

श्रोताओं, माँ जरूरी है कि वो जीवन है और नहीं है तो उसकी याद ही काफी है। जीवन को जीवंत बनाए रखने में माँ अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ती। माँ की बूढ़ी देह की उपस्थिति भी हमारे जीवन को उतना ही संबल देती है जितना कि कभी कभी बचपन में उसका फुर्तीलापन हमें निश्चिंतता दिया करता था। अब भी घर से दूर रहते हुए बेटे बेटी को रात में जब फोन करके माँ पूछती है, बेटा खाना खाया, तो जवाब देने से पल भर में उसकी थकान दूर हो जाती है और माँ की बनाई हुई गरम दाल रोटी और उसकी बनाई हुई सब्जी हमें याद आ जाती है और वो इसी तरह जीती जागती है जीवन भर बच्चों के लिए। माँ जीती है अपना जीवन मुझ में, हम सब में स्वाद बनकर, प्यार बनकर, दुलार बनकर, आंचल की छांव बनकर, इससे भी अधिक माँ का हिस्सा समाया रहता है हमारे हर एक वक्त में, हमारे हृदय की धड़कन बनकर हर वक्त जीवन पर्यंत। शायर लिखता है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से गीत गुंजन, और आज हम माँ को याद कर रहे हैं। श्रोताओ, माँ का हर दिन होता है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन माँ फुर्सत हो। चाहे रविवार की छुट्टी हो या किसी त्योहार की छुट्टी, माँ तो बस काम में लगी रहती है। लेकिन माँ तो बस माँ होती है, बच्चों के प्रति उनका स्वभाव, उसके भाव ये तय होते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चलता है। बच्चे के चेहरे को देखकर वह समझ जाती है कि हमारा बच्चा दुखी है। वह घर पर खटे या बाहर की जिम्मेदारियों में उसका जीवन बटे या फिर घर बाहर दोनों में खपे, उसके हर पल में बच्चे ही होते हैं। माँ से रिश्ते में भौतिकता ही नहीं, वह तो विशुद्ध भाव प्रधान है। माँ की उपस्थिति की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। इसके लिए हमें बारम्बार धन्यवाद करना चाहिए उस ईश्वर का जिसने माँ को बनाया। दुनिया में हर माँ अद्वितीय है, उसकी किसी और माँ से तुलना हो ही नहीं सकती। उसके दिन रात 2400 घंटे के जतन को कैसे भूल सकता है कोई। हमें स्कूल भेजने के लिए सबसे पहले उठती है और रात सबसे आखिर में सोती है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं बल्कि रोजाना लगातार अनवरत कई सालों तक। जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए, वो अपने काम के लायक ना हो जाए, तब तक माँ लगातार कोशिश करती है। माँ बिना उबे बिना खींचे, बस प्रेम और दुलार के वशीभूत एक ही जैसा काम रोज बरोज करती है। करती हुई आज भी स्कूल के बच्चे को गणवेश में देखकर अपने बचपन से मन में माँ की छवि कौंध उठती है। शायर कहता है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से गीत गुंजन। न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल प्रसार भारती के मोबाइल ऐप के माध्यम से देश दुनिया में जुड़े हुए हैं आकाशवाणी छतरपुर से, और आज हम माँ की बात कर रहे हैं। श्रोताओं, आंखों में सपने माँ देती है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी माँ से ही मिलता है, लेकिन जो सपने पूरे नहीं हो पाए तो उन स्थितियों में अपनी खुशी की तलाश में माँ का हाथ कैसे छोड़ा जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही नानी के घर जाने की जिद बच्चों की जुबान पर आ जाती है। बेटी माँ को याद करे उससे पहले ही माँ का इसरार आ जाता है, घर आ जाता है और बिटिया को देखकर माँ कितनी खुश आ जाती है और कितनी प्रसन्न हो जाती है। छुट्टियों में ननिहाल जाने की रस्म शायद इसीलिए भी बनी है कि बार बार त्योहार तो ददिहाल में मनाए जाते हैं, नानी के दुलार के लिए तो यही कुछ दिन आते हैं। बेटी के जन्म का घर मायका कहलाता है। इस शब्द में बड़ा सुकून है। जीवन की कोई भी तपिश माँ के अंचल आंचल की ठंडक से आगे टिक नहीं सकती। बेटा बेटी जब घर से दूर रहते हैं तो अक्सर माँ की याद आती है, उनके हाथ का खाना, उनकी परवाह, उनकी हर काम में मदद। लेकिन माँ चाहे कोई भी काम करे, बच्चों का ख्याल उससे दूर नहीं होता। उसे बच्चों से कुछ चाह नहीं होती, उनको महज देखने, उनको दुलारने, उनको आराम देने में चैन मिलता है। देर तक बच्चे के लिए जागती माँ से बच्चे पूछते हैं, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो माँ, सो जाया करो, हम आकर खाना खा लेंगे। इस कथन में ऐसा क्या है जो माँ मान नहीं पाती। बच्चों के घर लौटने से पहले सो जाए, उनको भरपेट गर्म खाना खाते देखे बिना संतुष्ट कैसे हो जाए माँ, उनकी फिक्र ना करे, ये कैसे संभव है। इसके जवाब में हर माँ यही कहती है, तुम्हारे बच्चे जब होंगे तब तुमसे पूछेंगे कि उनकी चिंता क्यों करती हो, तब तुम्हें पता होगा। संतान के जन्म के साथ ही जन्म लेती है माँ की परवाह। शायर कहता है, माँ सबसे बड़ी है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ की दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ये फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगती है, माँ की ओढ़नी अच्छी लगती है। सचमुच खुश हैं वो जिनके पास माँ बाप हैं। दुनिया की सारी दौलत भी देकर माँ बाप वापस नहीं आ सकते। आइए हम उनकी परवाह करें और

सुदौ हर दिन माँ का होता है। माँ का कर्ज चुकाना नामुमकिन है, पर उसे यह एहसास दिलाना उतना ही मुमकिन है कि वह हमारे लिए आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी बचपन में हुआ करती थी, जितनी तब भी वह पहली बार जब हम उससे चलना सीख रहे थे, आज उतनी ही महत्वपूर्ण है। बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने माँ को बनाया। और माँ तो बस माँ होती है, उसके प्यार की कोई परिभाषा नहीं, कोई अंत नहीं, कोई आरंभ नहीं। उसकी गोद दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित कोना है, पहला ईश्वर, दूसरी माँ।

उसकी दुआएं सबसे मजबूत ढाल की तरह बच्चे को हर एक मुसीबत से बचाती हैं। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ को उसकी चिंता हमेशा सताती रहती है। शहर के रास्ते हों या चाहे गांव की पगडंडियां, माँ की उंगली थाम कर चलना बहुत अच्छा लगता है। चलना बहुत

0: अंचल में दुनिया है वहाँ तेरे आंचल में।
1: श्रोताओं, माँ सबसे महान है। माँ के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही होता है। पीपल सी छांव की तरह होती है माँ, जिसमें पूरा संसार धीरे से आकर समा जाए, ऐसे होती है माँ। सुबह की पहली रोशनी है, थके दिनों की ठंडी छांव है। जब दुनिया सवाल बनकर सामने खड़ी होती है तब माँ बिना शब्दों के जवाब बन जाती है। उसके हाथों में दवा भी होती है और दुआ भी। वह खुद टूटकर भी अपने बच्चों को मुस्कुराना सिखाती है। सबसे मजबूत होती है हमारी माँ। वह घर की धड़कन होती है और उसकी धड़कन होते हैं बच्चे। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी माँ। आइए माँ का आदर करें, उनका सम्मान करें और जीवन भर उनकी दुआएं समेट लें।

हर दिन माँ का है। माँ के सम्मान में हम सबका कर्तव्य है कि उन्हें कभी दुख ना हो। अपने माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा से कम नहीं है। वो मेरी जमीन, वो ही आसमान है, वो खुदा, वो ही भगवान है। क्यों जाऊं मैं कहीं उसे छोड़कर, माँ के कदमों में सारा जहान है। आइए इस मदर्स डे पर माँ को याद करें और उनके पास जाएं और सीखें जीवन के अनुभव।

इसी के साथ ही आज का गीत गुंजन समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र अहिरवार को। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग। आज हमारे कलाकार हैं चिंतामन राय, संगत कर रहे हैं ढोलक पर नीतेश और बेंजो पर हैं राजाराम विश्वकर्मा। सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना, स्वर चिंतामन राय का।

0: भगवान गणेश जी की वंदना अभी आप सुन रहे थे चिंतामन राय के स्वर में। आप सुन रहे हैं लोक रंग और आज हमारे कलाकार हैं चिंतामन राय।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दी,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा,
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: लोक रंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं चिंतामन राय। लीजिए अब सुनिए इन्हीं के स्वर में ये देवी भजन।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: लोकरंग कार्यक्रम में चिंतामन राय के स्वर में लीजिए, सुनिए एक चेतावनी।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: लीजिए सुनिए एक और चेतावनी, कलाकार हैं चिंतामन राय।

0: चिंतामन राय के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये चेतावनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, और आज हमारे कलाकार हैं चिंतामन राय। हम रुकते हैं कंतराल के लिए।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: मानस देहिया पी खा के
0: लोकरंग कार्यक्रम के समापन में नशा मुक्ति पूर्ण लोक रचना चिंतामन राय के स्वर में।
3: कर बेघर मोह ते ना मरो, भजन भगवान।

चिंतामन राय के गाए हुए इसी नशा मुक्ति पूर्ण लोक रचना के साथ ही बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न हुआ। आज हमारे कलाकार थे चिंतामन राय, ढोलक पर नीतेश और बेंजो पर राजा राम विश्वकर्मा संगत कर रहे थे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का आपके पत्रों पर आधारित साप्ताहिक संयोजित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र अहिरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला पत्र हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले बताते हैं जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम के लिए मेल आईडी, हमारा ईमेल आईडी है bhavdeechhadarpur@gmail.com bhavdeechhatarpur@gmail.com और कार्यक्रम के लिए आप अपने पत्र चिट्ठियां हमें भेज

सकते हैं जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। और अब ये पहला पत्र हम लेते हैं, हमें मिला है ईमेल पर अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर का। आप लिखते हैं, पितरू माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। माँ पहले बच्चे की पहली गुरु होती है जो उसे इस दुनिया में आने से पहले ही जीवन का पाठ सिखाती है। बचपन वो खजाना है जिसे हम बड़े होकर सिर्फ यादों में खोलते हैं और अक्सर उस खजाने की पहली तिजोरी माँ की गोद होती है। माँ की लोरी में न राग होता है न ताल, पर वही सुर जीवन भर के लिए कान में बस जाते हैं। दुनिया के शोर में भी माँ की आवाज वो चैन सुकून हमें देती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। माँ की ममता, त्याग, प्रेम और बलिदान की किसी चीज से तुलना ही नहीं की जा सकती। इसी अनमोल रिश्ते को सम्मान देने के लिए मई माह के दूसरे रविवार यानी कल मदर्स डे हम मना रहे हैं। माँ का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है।

हमें देती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। माँ की ममता, त्याग, प्रेम और बलिदान की किसी चीज से तुलना ही नहीं की जा सकती। इसी अनमोल रिश्ते को सम्मान देने के लिए मई माह के दूसरे रविवार यानी कल मदर्स डे हम मना रहे हैं। माँ का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी माँ के रूप को विशेष स्थान दिया गया है। माँ अपने बच्चे के जीवन में मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाती है। मन उदास हो या कोई तकलीफ हो तो माँ की गोद में ही सुकून मिलता है। माँ की ममता ऐसी होती है जो बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना ही चाहती है। मदर्स डे हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में जो भी सुख सुविधाएं हैं उसमें माँ का त्याग और परिश्रम छिपा हुआ है। माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। माँ ने हमें जन्म दिया, लेकिन उनके साथ ही माँ ने हमें जीवन जीने की कला भी सिखाई। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत तकलीफ सहती हैं। आज जब भी माँ की ममता और उनके त्याग को याद करता हूँ तो बस गुनगुना उठता हूँ ये गीत।

कार्यक्रम का ही अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है वंदना त्रिपाठी ने इंदिरा नगर उरई जालौन से। आप लिखती हैं, साथियों कल मदर्स डे है। माँ ये शब्द जहन में आते ही कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि माँ केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भावना है। माँ वह है जो पूरे परिवार के साथ साथ हमारी देखभाल करती हैं और घर को एक सुंदर आशियाना बनाती हैं। माँ की उपस्थिति ही हमारे घर की रौनक है। अगर माँ कुछ पल के लिए भी हमारी नजरों से ओझल होती हैं, तो वही घर वीराना सा लगने लगता है। माँ हमें जन्म ही नहीं देती बल्कि भावनात्मक शारीरिक और मानसिक विकास में मार्गदर्शन कर जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। माँ प्रेम सुरक्षा और संस्कारों की पहली पाठशाला होती है, वह जानती है तथा पालनहार भी वह करती है। माँ के बिना जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। माँ जननी है, ईश्वर से बढ़कर भी जननी है, क्योंकि माँ ममता त्याग और समर्पण की साक्षात मूर्त है। माँ दुनिया की सबसे प्यारी इंसान है जो अपना निस्वार्थ प्रेम हम बच्चों पर लुटाती है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। माँ के इस

कार्यक्रम का अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा का, बन्ने बुजुर्ग पलेरा जिला टीकमगढ़ से। आप लिखते हैं, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तो ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। जेब में बजन हो तो दुनिया सर झुकाती है, और जब वही जेब खाली हो जाती है तो अपने भी पहचानने से कतराने लगते हैं। यही इस दुनिया का कड़वा सच है दोस्तों, जहां इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं उसकी दौलत से लगाई जाने लगी है। जब पैसा होता है तो लोग आपकी बात को महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं, आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं, और आपके पास भीड़ लगी रहती है क्योंकि आपके पास पैसा है तो सारी दौलत है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, वही लोग दूरियां बनाने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं और नजरें चुराने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इंसान अपनी पहचान पैसों से नहीं, अपने कर्म और व्यवहार से बनाए, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं होगा, लेकिन अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छे रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। जब भी इस दुनिया में दौलत के बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है अकटोहा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर से सुरेश कुमार साहू ने। आप लिखते हैं, एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, ये बताओ कि पानी झरने के ऊपर खड़ी होकर पिया जाता है नीचे जाकर? आनंद ने उत्तर दिया, झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है, अतः उसके नीचे जाकर ही पानी पिया जा सकता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तो फिर यदि प्यासे को संतुष्ट करना है तो झरने को ऊंचाई से ही बहना होगा। आनंद ने हाँ उत्तर दिया। ये सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आनंद ठीक इसी तरह यदि तुम्हें किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही आप प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें देने के लिए दाता को भी ऊपर खड़े होना होगा। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो तो कुछ तुम ऐसे सागर में बदल जाओगे जो ज्ञान की सभी धाराओं को अपने में समेट लेता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, इतिहास गवाह है कि वही लेने वाला सबसे ज्यादा फायदे में रहता है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ पाना चाहता है, जबकि विश्वास के साथ पाने की इच्छा अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला हमेशा स्वयं को रिक्ति ही महसूस करता है। उक्त तथ्यों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को सहज और विनम्रतापूर्वक बनाने के लिए प्रकृति से भी सबक जरूर लेना चाहिए। जब भी मैं इन बातों को सोचता हूँ तो बस गुनगुनाऊं।

और करुण वर्मा का आप लिखते हैं। दोस्तों युवावस्था में अनेक अरमान भावनाएं उमंगे आती हैं और ये उमंगे नवीनतम कल्पनाएं लेकर हर युवा मन विवाह के बंधन में बंधकर अपने जीवन साथी के साथ एक नई दुनिया की कल्पना संचय होती है और हर युवा विवाह के पूर्व अपने कुंवरे सपने और अपने जीवन की याद में बुनते हैं अपने सपने। जब भी मैं ऐसे युवाओं को देखता हूं तो बस गुनगुना उठता हूं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ ग्राम लोहिड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद रिया, रेणु दिव्यांशी, रानिका और रागनी यादव। आप लिखते हैं, मित्रों कभी कभी आंखें भी बोलती हैं। आंख तो देखने का काम करती हैं, पर यह साबित किया जा सकता है कि आंखें बोलती हैं जन्म होती ही। आंखें बोलने लगती हैं, बच्चा बोलना तो बहुत देर बाद सीखता है, पहले आंखों आंखों में बात करता है। हर माँ ये बात जानती है, पहचानती है, उसका रोना हंसना सब आंखों से ही तो समझती है। जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है, आंखों का वह काम कम हो जाता है। फिर भी कई अवसर ऐसे आते हैं, है सब वह काम से यानी आंखों से ही उसके काम को देखती है। उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी जवाब दे जाती है, तब आंखों की भाषा भी देखने में आती है। आंखें तब भी बोलती हैं जब दिल पर कोई चोट लगती है, आंसू निकल आते हैं। कहा भी गया है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, पता नहीं आंसुओं का महासागर आंखों में कहाँ छुपा रहता है। मिलन में विरह में दोनों ही अवसरों पर आंखें भर आती हैं। बस इन्हीं बातों को सोचते हुए मैं गुनगुना उठा ये गीत।

कार्यक्रम का ही अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू तारा विद्या जितेंद्र हिरेंद्र सुनीता और चंद्रहांस का। आप लिखते हैं, दोस्तों सच में इस महान धरती के साए में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक संपदाएं व दुर्लभ वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हैं, चाहे वह पर्यावरण हो, जलवायु हो या पृथ्वी, मिट्टी हो या नदी, नाले, झरने या विभिन्न प्रकार के अमूल्य जीव जंतु, अमृत तुल्यमय जल भी हो, पहाड़, पर्वत, ये सभी बहुत ही दुर्लभ एवं अनमोल रत्न हैं। आज ये अनमोल रत्न विलुप्त से हो गए हैं। इन विलुप्त रत्नों को हमें सहेजना है। आज हम मानव इतनी गलती कर बैठे हैं कि हम प्राकृतिक अनमोल धरोहरों को क्षति पहुंचा रहे हैं। हम स्वयं ही उनका नुकसान कर रहे हैं, स्वयं ही अपने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज भी हम प्रकृति की होने वाले भारी नुकसान को बचा सकते हैं, जैसे पर्यावरण में वृक्षारोपण को हम महत्व दें, जल जंगल व जमीन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जीव जंतुओं को सुरक्षित व संरक्षित रखें। आज मैं जब इन बातों में सोचता हूं, तो मैं जरूर एक पौधा रोपित करता हूं और बस मन ही मन गुनगुना उठता हूं ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी भी प्रकृति और पर्यावरण में ऐसे ही झूमते रहें और अपने जीवन को बेहतर और ऐसी ही खुशनुमा बनाए रखें। और आप जब आप गुनगुना उठे इस कार्यक्रम में अपने ईमेल के द्वारा, अपने खतों के द्वारा शामिल हो सकते हैं। हमारा मेल का पता है bhavdeechhatarpur@gmail.com bhavdeechhatarpur@gmail.com। और डाक के लिए पता है कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। श्रोताओं, आप कार्यक्रमों के संबंध में हमें समीक्षाएं भी लिख सकते हैं। भवदीय कार्यक्रम जो प्रत्येक रविवार को सुबह 10:30 पे आता है आकाशवाणी छतरपुर से, तो आप इसी मेल आईडी पर यानी bhavdeechhatarpur@gmail.com इस मेल आईडी पर अपने खत और अपनी समीक्षाएं, जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, आप लिखें और कार्यक्रम में सुने। इसी के साथ ही जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम अब यहीं पर समेटने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र अहिरवार को, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगी।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के आईपीएस अधिकारी शियाज के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौना में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है।

0: इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। एनटीपीसी विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं, जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है, जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है, जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप जुड़े हुए हैं अपने पसंदीदा केंद्र आकाशवाणी छतरपुर से। और अब समय है सबरंग कार्यक्रम का। सबरंग में आज गीत, गजल, भजन, फिल्मी गीत और एक फिल्मी धुन हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले एक गीत सोनाली जलोटा के स्वर में।

0: मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे सोनाली जलोटा को। आप सुन रहे हैं सबरंग में मिश्रित संगीत, और इसमें गीत, गजल, भजन, फिल्मी गीत और एक फिल्मी धुन हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम यहाँ रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आप सुन रहे हैं सबरंग आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। लीजिए अब इस क्रम में एक गजल हम आपको सुनाते हैं पंकज उधास के स्वर में।

अब ये गजल आप सुन रहे थे पंकज उधास के स्वर में, शायर थी मुमताज राशिद। आप सुन रहे हैं सबरंग आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। हम यहाँ रुकते हैं अंतराल के लिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सब रंग, और इस क्रम में मिश्रित संगीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भजन। श्रोताओं आप सुन रहे हैं सबरंग आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से, हम रुकते हैं एक अंतराल के लिए।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सब रंग। लीजिए सुनिए सब रंग क्रम में एक फिल्म गीत।

इसी के साथ ही सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आपके ईमेल और खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद लेकर मैं हाजिर हूं, आपका ध्वनि मित्र राजेंद्र हरवार। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ईमेल के लिए तैयार हो जाइए, ईमेल करिए और सुनिए अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने। पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर सुखविंदर सिंह की आवाज में, तेरे नाम फिल्म से ये गीत है। गीतकार जली शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद। फरमाइश आप सभी की हम तक मिली हुई है। ये पहला पत्र हमें मिला हुआ है कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता का, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल मिला हुआ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का। इसी गीत को पसंद किया मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार नरगिस खातून ने। और इसी गीत में एक और मेल है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर यूपी से मोहम्मद बकार, फरीदी इकबाल, सितारा नसीन, रोजी, बिट्टू भैया, सारदारानी और हिना कौशल। इसी गीत को पसंद कर

हैं। दूलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, राजपाल काजल, मानवी लक्ष्म, मोहिनी बलवीर सिंह वीरक और इसी गीत में बलविंदर सिंह भी हैं। इसी गीत में शिव मंदिर, हकीकतपुरा, मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार अपनी फरमाइश से जुड़ चुकी हैं। एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पायल विलिस डिकेस्ट्रो अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू अपनी फरमाइश के साथ हमारे बीच हैं। खम्बरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार प्रजापति। और इसी गीत में एक और मेल मिला हुआ है, पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा अपनी फरमाइश के साथ हम तक पहुंच चुके हैं। श्रोताओं आप भी जुड़ सकते हैं aiarchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। और एक और मेल है, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक महंत, मयंक मूरत, चेतन नाहटा और इनके साथ इनके परिवार वाले इसी गीत को पसंद किया। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर ने, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी।

शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू अपनी फरमाइश के साथ हमारे बीच हैं। खम्बरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार प्रजापति। और इसी गीत में एक और मेल मिला हुआ है, पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा अपनी फरमाइश के साथ हम तक पहुंच चुके हैं। श्रोताओ, आप भी जुड़ सकते हैं aiarchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आई डी पर। और एक और मेल है, बोरखेड़ा पितरामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक महंत, मयंक मूरत, चेतन नाहटा और इनके साथ इनके परिवार वाले इसी गीत को पसंद किया। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर ने। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी इन देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी। और इसी गीत में बन्नी बुजर पलेरा, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेव विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा अपनी फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हैं। एक और मेल है, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति जायसवाल अपनी फरमाइश के साथ हम तक जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में यहाँ शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गुण अपनी फरमाइश लेकर हमारे बीच आए हैं। एक और मेल मिला है, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जु, नव्या बिजारनिया अपनी फरमाइश भेजते हैं। गांव खारिया ठाणी, जिला सिरसा, हरियाणा से अपनी पसंद के साथ ये जुड़े हुए हैं। इसी गीत में एक और मेल है, हमें लिख भेजा है लोहिड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशि, रेणु और ओनिका यादव। और बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश, रोशन वर्मा, कपूरी सिंह घोष और इनके परिवार वाले इसी गीत को पसंद करते हैं। हमारे ये मित्र हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज अपनी फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। गांव मथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्यू, सीता और गीता अपनी फरमाइश हम तक भेजती हैं। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे मित्र पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा और आप अपनी फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम, मुन्ना, दानिश अपनी फरमाइश में इसी गीत को पसंद की है। ग्राम पंचायत उपरहका श्रीरामपुर का डेरा सरीलम राठ, मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राजू यादव, सारांश यादव, बलवान सिंह यादव, अनूप कुमार राजपूत, महेश राजपूत, अनिल कुमार विश्वकर्मा और इनके साथ बलबान सिंह जी हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर्स से राम चबूतरा, कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। एक और मेल है, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजो बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा नूर अपनी फरमाइश में हमें जुड़ चुके हैं। इसी गीत में हिंगोली महाराज से शाजी बोर्डके, नंदा बोर्डके, हनुमान बोर्डके और उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, अम्बेडकर चौक से बाकोड़ी से हम तक अपनी फरमाइश लिख भेजी है। एक और फरमाइश है, अड़ार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी गोपी वर्मा और इसी गीत को पसंद किया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबी, राधिका गजबी, अनिष्का और तन्मय गजबी, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलाईगढ़ से ही रोशन दिवांगन, कौशल्या दिवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। रिंगमी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने और अपनी पसंद के साथ जुड़े हुए हैं हमारे ये श्रोता, रजाक मोहम्मद, समीन बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ नई दिल्ली उत्तम नगर से बोधराज कुरबाल, गमला रानी गीत का कुरबाल और भानु प्रकाश, हम आप सबको तेरे नाम फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं।

विश्वकर्मा अपनी फरमाइश से जुड़े हुए हैं और यहीं से साधु बाबा वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय दीपक और मोनू तोमर, सोनू तोमर अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमिता होजा अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ आप हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर। इसी गीत में मिहिरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गभानकर, सरिता एकांश बदलापुर मुंबई से, प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन गभानकर और आकार नागपुर से, बहादुरा नागपुर से हमें लिखते हैं वैशाली और सुमित गभानकर। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू अपनी फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। एक और मेल है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगडुग भाविका सिक्का। और इसी गीत में हमारे साथ अपनी फरमाइश से जुड़ चुके हैं हमारे मित्र, अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं। ये मेल हमें प्राप्त हुआ ग्राम लसूरिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, नरसिंहगढ़ पूर्वा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, रिक्की राम कुशवाहा, एसएम जावेद, शबुक्ता, अंजुम जावेद हमें लिखते हैं गुमला झारखंड से अपनी फरमाइश। और इसी गीत में एक और फरमाइश है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और इसी गीत में ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, ये मेल लिख भेजा है, लिखने वाले हमारे साथी हैं पापड़ सायगढ़ से अशोक, कमल नामदेव और इनके साथ हैं इनके परिवार वाले। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, लिख भेजा है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनकराज पटेल, मोटा कम ऑफ जिला खंडवा से। और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने पंकज गुप्ता और आयुषी गुप्ता, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। और इसी गीत को पसंद करते हैं नेहरी बोर्ड पांडुर कमड़ा से अनिक बुरांडी, उषा बुरांडी, अनुश्री, धनश्री और इसी गीत में बलहाल शाह से सूरज लौंडी, प्राची लौंडी और एकलव्य लौंडी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। एक और मेल है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, बेबी आराध्या और समीक्षा साहू। एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए। हमारे ये श्रोता है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता। और इसी गीत में एक और पसंद हमें लिख भेजिए हमारे श्रोता हैं राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी और इनके परिवार वाले। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजे बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। और एक और मेल है हमें लिख भेजा है इसी गीत में, अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। और ये मेल है बारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान, रेहान, इमरान। और इसी गीत में करूला मुरादाबाद से अयूब खान अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। एक और मेल है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और शैफाली अरोड़ा। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान अपनी फरमाइश में हम तक जुड़ चुके हैं। और इसी गीत में ये मित्र हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना, एसके पप्पी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और ये मेल हमें मिला हुआ है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने रामपुर गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, शशिकांता, चंद्र कला प्रजापति। और इसी गीत को पसंद किया जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डुकेस्टो, रोजी डुकेस्टो, पर्ल विलिस्टे कैस्ट्रो। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है तितुरा खलीलपुर जिला जालौन से अंजलि सिंह जाटो, ऋषि जाटो, आकांक्षा, सोहम सिंह परिहार, शालू सिंह परिहार का। और इसी गीत को पसंद करते हैं अक्रम हुसैन और बेगम वसीम, सुनीता और इनके परिवार वाले, लिख भेजा है कुआत बिहार से। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कनवासरा, सचिन, सतीश, योगेश कनवासरा, युद्धव कनवासरा। और ये है मुन्नापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र जैन। और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजा है खकलकुंवर जिला जालौन से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशुराज सिंह गुर्जर और इनके मम्मी पापा। और इसी गीत को पसंद किया ग्राम पोस्ट मुंगी सापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, इनके साथ निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद और इनके परिवार वाले। इसी गीत को पसंद किया है बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार वाले। लिखते हैं बडिंग

खेड़ा पंजाब से, और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र, लिख भेजा है, ये मेल हमें प्राप्त हुआ है, हमारे ये श्रोता अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजे हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक और संदीप मक्काड, और इसी गीत में रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी अपनी फरमाइश के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसी में ये हैं कोच उरई कोच से वंदना त्रिपाठी और इनके परिवार वाले, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे श्रोताओं ने। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो एलजनायाब और लड्डू अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेल है गांव जाखो से शंभु दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, और इसी गीत में रजाक मोहम्मद, शमीन बेगम और जीसान हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल है किकीर मेटा बेल हरिपाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा, और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। अपनी मेल से पसंद हम तक लिख भेजी है परभणी महाराज से रूपेश, महेश, प्रगेश और प्रीतेश हितेश सिंघई ने, और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये श्रोता अपनी फरमाइश। अनुपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी, कृष्णा केवट और इनके परिवार वाले श्रोताओं, आप सभी जोड़ सकते हैं या छतरपुर 1976@gmail.com इस मेल आईडी से अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। एक और मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है, ये मेल है लोहगढ़ ठांकुरा वाले से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह ने। हम आप सबको सुना रहे हैं दबंग 2 फिल्म से ये गाना।

दबंग 2 फिल्म का गाना अभी आपने सुना। और श्रोताओं, आपके पसंद कार्यक्रम में आप सभी मेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airchhatarpur1976@gmail.com। कुछ खत भी हमें प्राप्त हुए हैं इसी कार्यक्रम में, उन्हें भी हम उठाते हैं। अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर बोल बच्चन फिल्म से, हिमेश रेशमिया श्रेया घोषाल की आवाजें, गीतकार शब्बीर अहमद और संगीतकार हिमेश रेशमिया। और मेल हमें आप सभी के प्राप्त हुए हैं, जी मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है। पहले ये खत हम उठा लेते हैं। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मोनिका नुपुर, रिश्का और रॉबिन ने अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। जी मेल हमें मिला हुआ है, खत हमें मिला हुआ, सत्य प्रकाश अहरवा, ठाकुर दीन, माता दीन, राम हेतु, ओम प्रकाश, ज्योति, राजकुमारी, अर्चना का कनायो, करतल, पुष्पोंगरी, तहसील नरेनी, जिला बांदा से इसी गीत को पसंद किया है। प्रेमलागंज आलूट, जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, मायाबाई शोभा और इनके साथ ज्योति अतुल वर्मा और इसी गीत को पसंद करते हैं मेल के माध्यम से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कौशल, नीति सुरभि, अश्विनी, मंगला मीन, राजेंद्र जी शाह, नीपानगर मध्य प्रदेश से और अपनी फरमाइश लिख भेजी है। हमारे ये मित्र हमें लिख भेजा है तालगांव पोस्ट, ग्राम पोस्ट तालगांव, तहसील भांडे, जिले दतिया से मेहरबान सिंह नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, संतोष कुमार नागल, बिडोरा दतिया से लोकन सिंह गुर्जर और साथ में है यशपाल सिंह, जयपाल सिंह, महपाल सिंह गुर्जर और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल हम तक लिख भेजी है, ये खत भी मिला हुआ है। प्रभाकर जौंधली, आरती जौंधली, गौतम नगर, जिला नांदेड़ से अपनी फरमाइश के साथ हम तक जुड़ चुके हैं और मेल हमें मिला हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश से, वंदना नगर से नारायण भाई खर्चू और ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक परी खर्चे और अपनी फरमाइश के साथ ये पत्र हमें मिला है। गांधी चौक रूपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक, मीका विरक अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये पत्र है देवरी भटापारा छत्तीसगढ़ से, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, सुरेंद्र मोहन, मंजू, मानसी, मनमोहन, गिरजाबाई मरकाम हमें लिख भेजते हैं, तिवरता डबरीपाला छत्तीसगढ़ से और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है, मेल हमें प्राप्त हुआ है और ये खत भी मिला हुआ है। नवागढ़ कटई से सीमा, शाखा, दामनी वर्मा और इनके साथ इनके परिवार वाले और इसी गीत को पसंद किया। बेमित्रा छत्तीसगढ़ से लिख भेजा है, सुरेश कुमार सारथी, वीरेंद्र, ब्रजकांत और इनके परिवार वाले। ये मेल है मकियापुरा महुआ उत्तर प्रदेश से, के सज्जन, केशव प्रसाद और पंकज, इन्होंने भी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डुकैस्ट्रो, रोजी परलेविल स्टेकेस्ट्रो अपनी फरमाइश के साथ जुड़ी हुई है और इसी गीत में कुछ और खत हमें मिले हुए। तरसमा मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर, दीपू अमित, अंकित वर्षा और डॉली तोमर और छत्रपति संभाजीनगर से राजेश रावली पाटिल, राजदीप और राशि और शीतल राजेश और इसी गीत में अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। पूरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन से विनोद मुड़त ने, अजय दीपक महन, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार और इसी गीत में अपनी फरमाइश है। नलेश्वर नगर, नरभील।

से पीएस नुहाकर, निर्मला विशाल नुहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले। और इसी गीत में सतबीर सिंह विजारिनिया अपनी फरमाइश के साथ देवेंद्र राजपाल और नाविया विजारिनिया अपनी फरमाइश से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: पजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया अपनी मेल से जुड़े हुए हैं।
1: कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए।
0: तो आप सभी हमें मेल कर सकते हैं आपकी पसंद और मनभावन में। हमारा ईमेल आईडी है AIR 1976@gmail.com और पत्रों के लिए पता है आपकी पसंद मनभावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। और इसी के साथ अपने दोस्त राजेंद्र अहिरवार को अब अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है, अगला प्रसारण कुछ पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: भोर की अंगड़ाई से सांझ की दियाबाती तक या फिर सुबह की पहली किरण के बुलावे पर आसमान पर जागते दिन की अनछुई लाली हो, कुछ इस तरह आकाशवाणी के श्रोताओं के दिलों पर राज करती आई है हमारी आकाशवाणी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 सालों के गौरवशाली वर्षों को हाजी नमस्कार
1: नमस्कार साहब हेलो सर
0: हाँ जी नमस्कार
1: नमस्कार आज का क्या विषय है?
0: आज का हमारा विषय है आकाशवाणी, जो कि अपने गौरवशाली 90 वर्षों को बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपके सहयोग से आपके साथ के साथ मनाती आई है। और आज आकाशवाणी के लगभग पूरे देश के तमाम केंद्रों पर वॉकेथॉन या कि मैराथन का आयोजन किया गया है, इस विषय पर आपके क्या विचार हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: हमारे विचार ये है सर कि ये आकाशवाणी है ना, हर इंसान को शांति पहुंचाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इससे क्या है, कोई ना भी हो

0: अपना रेडियो कर रहा है तो अपना दिल भरा भरा रहता है, कोई दुख नहीं, कोई वो नहीं
1: जी।
0: रेडियो सुनते रहते तो सारे गम दूर हो जाते हैं।
1: तो आकाशवाणी ने एक तरीके से आपके सुख दुख के पलों में अपना हाथ बटाया है, जब आप अकेले हुए हैं, जब आप तन्हा हुए हैं, उसने अपना कांधा आगे किया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाया है आपकी तन्हाई को दूर करने में, आपके एकाकीपन को बांटने में आकाशवाणी आपकी साथी बनी है।
0: जी सर
1: जी। चलिए तो इसी खुशी के मौके पर एक गीत आपके नाम करते हैं, आप इस गीत को सुनिए और खो जाइए आकाशवाणी के इन खूबसूरत पलों में। नमस्कार
0: सर। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: सर, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, राजू जी, आगरा से
1: जी
0: आपने
1: सर,
0: फोन लगाया है। क्या हाल चाल है इन दिनों आगरे के?
1: आगरा में हालचाल ठीक है। मौसम आजकल बहुत सुहाना हो रखा है। बारिश सुबह भी यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और पिछले कहा जाए तो लगभग अप्रैल महीना पूरा ही बारिश और आंधी में गया। मई का महीना भी लगभग ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि
0: अच्छा।
1: आज 8 मई हो चुकी है, तब भी मौसम एकदम खुशगवार है।
0: अच्छा जी, तो मोहब्बत की नगरी में इन दिनों माहौल और फिजाएं बहुत ही खुशनुमा हैं।
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल।
0: आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं कि रेडियो ने, आकाशवाणी ने आपके जीवन को कितना समृद्ध किया है। कौन सी ऐसी सीख है जो आपने रेडियो से सीखी, आकाशवाणी से सीखी है? कोई ऐसी
1: रेडियो से
0: बात या
1: सबसे बड़ी
0: याद?
1: चीज तो हमने ये सीखी कि हमें दूर दूर के श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि हमारा एक ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है जो हमें जोड़ता भी है, रेडियो से भी जोड़ता है और श्रोताओं से भी जोड़ता है, क्योंकि हम कई सारे केंद्रों पे इन्वॉल्व रहते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन वाले जो स्टेशन है आकाशवाणी के। और ये जो ब्रज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है, ये कई सारे केंद्रों से जुड़ा रहता है, और इसका यही काम है कि श्रोताओं को रेडियो से जोड़ना। और रेडियो का जो काम है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये रेडियो का सिद्धांत रहा है शुरू से आकाशवाणी का। तो रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, अच्छी अच्छी जानकारियां तो मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है, साथ ही कई सारे ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो हमारी जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और खास करके हम तो संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हमें संगीत के कार्यक्रम, चाहे वो सुगम संगीत हो, फिल्म संगीत हो, लोक संगीत हो, या फिर जो भी संगीत से जुड़े कार्यक्रम हैं, बहुत पसंद आते हैं हमें, और हम उन कार्यक्रमों को बड़ी चाव से सुनते भी हैं सर।
0: आपकी बातों को अगर हम सार संक्षेप में कहें तो आकाशवाणी ने अपने लोकगीतों को, लोक रागों को, लोक व्यक्तित्वों को अपने इन कार्यक्रमों में जगह देकर हमारी संस्कृति को बचाने में अहम योगदान दिया है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो पुरानी परंपरागत संस्कृति है उसको जीवंत रखने में आकाशवाणी की अहम भूमिका है, चाहे वो होली गीत हों, चाहे वो नवरात्रियों में माता रानी के गीत हों, चाहे दीपावली हो, यानी जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, हर तरह के गीत, हर तरह के संगीत से और हर तरह के जो योग्य कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है हमारी देशभक्ति के प्रति, हमारी परंपरागत पौराणिक संस्कृति के प्रति, वो सभी कार्यक्रम प्रसारित करके आकाशवाणी ने अपनी एक अहम भूमिका अदा की है।
0: चलिए, आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए आगे हम एक गीत आपकी नजर करते हैं। आपने हमें
1: धन्यवाद
0: फोन
1: सर,
0: किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू
0: नमस्कार।
1: सर, नमस्कार।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

शैलेंद्र दुबे की गाई इस चौकड़िया के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में जो आपने शैलेंद्र दुबे से लोकगीत सुने थे उन पर संगत की थी ढोलक पर नीतेश ने और बेंचों पर राजा राम विश्वकर्मा ने। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये सूचना है कुमारी वर्षा बानो के संबंध में। आप दिनांक 25 फरवरी 2026 से ग्राम भिटारी से लापता हैं। आपकी आयु है 19 वर्ष, कद 4 फीट 9 इंच, दोहरा जिस्म, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें काली, बाल काले। इन्होंने लाल फ्रॉक और खाकी रंग की पैजामी पहनी हुई थी। यदि किसी को इनके बारे में जानकारी मिलती है तो वो इस पते और मोबाइल नंबर पर सूचित कर सकते हैं। संपर्क के लिए पता है मौसम अली, पुत्र नूर शाह, निवासी ग्राम भिटारी, थाना सिरसा, कलार, जनपद जालौन। मोबाइल नंबर है 9580056709।

गुमशुदा के संबंध में एक और आपको सूचना दे दें, ये गुमशुदा है पूनम। ये दिनांक 31 मार्च 2026 को दिन में 12 बजे से अपने घर मुकाम जवाहर नगर थाना कोच जनपद जालौन से लापता है। इनकी आयु है 28 वर्ष, ऊंचाई है 157 सेंटीमीटर, सामान्य गोरा रंग है और ये अपने साथ 7 माह की बच्ची अनन्या को भी ले गई हैं। यदि किसी को इनके संबंध में जानकारी मिलती है जिनका नाम है पूनम अग्रवाल, तो वो इस पते और मोबाइल नंबर पर सूचित कर सकते हैं। पता है पुष्पा देवी पत्नी सुरेश चंद्र अग्रवाल, निवासी मुकाम जवाहर नगर थाना कोंच जनपद जालौन। मोबाइल नंबर है 6307677693। सूचना समाप्त हुई।

0: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सिंह। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभाभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशिद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा, विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।
2: बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
0: 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान की छिपरा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हो। संभाग आयुक्त ने बताया कि
3: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकल कर लगभग 6 किलोमीटर का निर्णय भ्रमण किया गया है महाशिवरा के कार्य के नाम। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा उपयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। लगभग 200 मीटर पर हम लोग एंट्री बना रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचार विस्तृत छोटी सी विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंडा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेशभर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में महिला ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 142 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसिंह जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती संरक्षण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडेरा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसक ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
2: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले। अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें।
0: और कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। और जलडबरी नदी के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन कर आबले नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गई। आगरमालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

रेडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुनने वाले सभी भैया बहनन खां और पंचन खां किशोरी भैया की राम राम पहुंच जावे। पंचों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम चर्चा एक ऐसे महापुरुष की करवी जिनको प्रभाव न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में उनकी लेखनी के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से और उनके संगीत के माध्यम से पढ़ो। हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जन्म 7 मई 2026 को मनाओ जात है, जबकि बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से इनको जन्म 9 मई मानो जात है। 2026 में मतलब इस साल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती हम आप सब मिलकर मना रहे हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर खां 1913 में गीतांजलि के लाने साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करो गौ तो एशिया महाद्वीप में नोबेल पुरस्कार पावे वाले जे पहले विद्वान हते। जन गण मन अधिनायक जय हे ई गान से भारत को जन जन परिचित है। भारत को जो राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला में लिखो हतु। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पश्चिम बंगाल में एक उत्सव के रूप में मनाई जात है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का 165वीं जयंती के अवसर पे आकाशवाणी छतरपुर के पूरे ग्राम सभा परिवार की तरफ से विनम्र पुष्पांजलि। पंचों, कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं, उके पहला लें एक छोटो सो विराम।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: गठियावाद, गठुआवाद और घुटनों के दर्द से आप लंबे समय से पीड़ित हैं तो निजात पाने के लिए संपर्क करें वैद्य रामचरण प्रजापति, खरगपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। फोन नंबर है 9993285161। अपने दर्द का उपचार पाइए वैद्य रामचरण प्रजापति से।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: ई विराम के बाद कार्यक्रम में अपन सबको पंचों फिर से स्वागत है। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी है, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई माह के दूसरे शनिवार खां बड़ी धूमधाम से मनाओ जात है। जो कार्यक्रम आम जनता के बीच में स्वस्थ पक्षियों की आबादी बनाए रखबे के लाने, प्रवासी पक्षियों के द्वारा उपयोग करे जाए वाले प्रजनन, गैर प्रजनन और पड़ाव स्थलन की रक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखबे के लाने मनाओ जात है। देखो पंचों, जे पक्षी हर किसानन के मित्र होते हैं, इनकी रक्षा करबो, इनकी सुरक्षा करबो अपनो नैतिक कर्तव्य है। आज की ग्राम सभा में जितने ही पंच हमारी जा आवाज सुन रहे हैं और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जा चर्चा हमारी सुन रहे हैं, वे सब प्रवासी पक्षियों की देखरेख में, उनकी सुरक्षा में अपनों कर्तव्य निभाएं और स्वीकार करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की हमारी ढेर सारी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पंचो इब्राम के बाद अपन सब खामले चल रहे हैं उ कार्यक्रम की तरफी जोन कार्यक्रम अपन सबके हृदय में बसो है। कार्यक्रम है हेलो लोकरंजन। तो पंचो रविंद्र कुमार प्रजापति की प्रस्तुति में आनंद लो आज के कार्यक्रम हेलो लोकरंजन को।

0: साथियों हमारे पीछे से एक मधुर सुर आपका गुजर भाव महसूस हो रहा है, जो एक ऐसा शब्द है जिसका सुन के एक सुरक्षा की भावना मन में पैदा होती है, जो एक ऐसा शब्द है जिसे हम इस संसार में हैं ये बात की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। माँ भाषा है भावना की, माँ अभिलाषा है जीवन की, और माँ परिभाषा है पूरे सृष्टि की, पूरे संसार की। यही से माँ वंदनीय है, सम्मानीय है। मताई के प्रति आभार प्रकट करवे के लाने, माँ के मातृत्व की मान्यता खां स्थापित करवे के लाने, जीवन के ई भागदौड़ में माँ से अपनो भावनात्मक रिश्ता बनाए रखवे के लाने, हर साल पूरे विश्व में माह मई के दूसरे रविवार खां मदर्स डे मनाओ जात है। ई बार जो मदर्स डे कल यानी 10 मई का पूरे विश्व में मनाओ जे है, पूरे आकाशवाणी छतरपुर और ग्राम सभा परिवार की तरफ से पूरे विश्व की मातृशक्ति का बारंबार नमन, देश की मातृशक्ति का बारंबार प्रणाम, और अपनी अपनी मातृशक्तियों का ढेर सारी शुभकामना और बधाइयां। साथियों आज के कार्यक्रम हेलो लोक रंजन में हम अपने उन सभी साथियों से भी ये बात पे चर्चा कर भी कि माँ शब्द को उनके जीवन में का स्थान है, माँ के बारे में उनकी का धारणा है, माँ से उनके संबंध और लगाव कैसे है। रविंद्र कुमार प्रजापति की प्रस्तुति में शुरू कर रहे हैं आज को कार्यक्रम हेलो लोकरंजन, और ये कार्यक्रम में अपन सबके संगे हैं हम अपन सबके सखा मैथिली शरण तिवारी। स्वीकार करो हमारी राम राम कार्यक्रम को जो पहलो फोन। हेलो लोकरंजन।
1: हाँ तिवारी नमस्कार।
0: जय जय सियाराम की।
1: जी मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: अरे तोमर साहब बहुत दिन बाद याद करो आपने भाई।
1: अरे क्या व्यस्तता है, शादी विवाह चल रहे थे।
0: नहीं बहुत शादी विवाह होती है तो कोई संदेह नहीं है।
1: जी जी
0: और क्या हो रहा हो
1: समय, वही शादी विवाह ही चल रहे है और विशेष कोई काम नहीं है।
0: चलो कोई बात नहीं है, बता दो जाए की को लोग की सुनने आज कार्यक्रम में।
1: उर्मिला पांडे का सुना देना।
0: चलो आपने उर्मिला पांडे को गाओ गीत सुनो चाहो है।
1: हाँ विवाह से गाड़ी जो नार गाड़ी कोई भी विवाह से संबंधित।
0: चलो ठीक है, और 10 तारीख का मातृत्व दिवस है मदर्स डे
1: 10 मई को,
0: क्या महत्व है जीवन में माँ को?
1: अरे माँ का तो पूरा महत्व ही, माँ के तोरण कोई हो नहीं सकता, तबियत का ध्यान रखना चाहिए। कहीं लोग अनाथालय में छोड़ देते हैं, कहीं विवश होते हैं वो बेचारे, ऐसा जीवन जीने के लिए माँ के प्रति हमेशा कर्तव्य अपना निभाना चाहिए, परिवार कर्तव्य।
0: बिल्कुल सही बात है। देखो बालक चाहे अनाथालय में पड़े
1: जी,
0: चाहे सड़कन पे पले
1: जी,
0: लेकिन माँ के अस्तित्व के बिना उनको तो जीवन में पदार्पण हो ही नहीं सकत,
1: कुछ नहीं हो सकता माँ के अस्तित्व के बिना।
0: लेकिन अगर एक स्त्री के अंदर माँ को करे जो है
1: जी,
0: सो हमें तो नहीं लगता कोनो स्त्री जानबूझ के अपने ही संतान खा अपने कोख से जन्मे बालक खा अनाथालय में या सड़कन पे पलवे के लाने छोड़ देत हुई है। अगर वह एक प्रकार की हरकत करे से कोनो महिला
1: जी,
0: तो वह मातृत्व की शक्ति भी ना कहाई, फिर ममता भी उनके करेजी में ना कहाई।
1: सही है, फिर तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है।
0: तो ठीक है, हर देवियन खां प्रणाम, और हम आप मिलकर सुन रहे हैं और मिला पांडे को गाओ जो लोकगीत जो अपन ने सुनवो चाहो है।
2: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नाम दे बोल रहे।
0: हाँ मनोज भैया बोलो।
2: सर जी लुगी सुनने तो आज
0: कलाकार को नाम बताओ।
2: उर्मिला पांडे जी की आवाज में लुगी सुनना है सर जी।
0: बिल्कुल आपकी जो इच्छा हम पूरी कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में, और क्या हो रहा?
2: थोड़ी सी मूंग ज्यादा गया तो भाई में पानी माए दिए तो कहा नो दीजिए।
0: अच्छा पानी की क्या व्यवस्था है जेठो मूंग के लाने, कुआं है?
2: हाँ कुआं बनो, कुआं पे तो पानी

0: बिल्कुल कच्चू दिक्कत नहीं है, पाई तो पर्याप्त है सर।
1: चलो अच्छी बात है, तो जठो मूंग अपन का हो जाए तो मतलब हमारे पास पहुंचा दे यू।
0: तो हम जैसी मूंग करी हम तुम्हारे नाव की धरते हैं कहानी। बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मम्मी पापा कैसे हैं घर में?
0: बहुत बढ़िया है सर।
1: चलो 10 मई का मातृत्व दिवस है, तो अपनी माताजी का हमारी तरफ से प्रणाम कहियो।
0: बिल्कुल साहब।
1: और अपन भी मूड़ धर के माताजी के पांव परियो
0: जो आपने कही हम भैया करें। बिल्कुल।
1: और हमारी तरफ से उन्हें मिठाई भी खवाई और अपनी तरफ से खवा रही।
0: ठीक है।
1: और ढेर सारा उनको आशीर्वाद ले चलिए और सुनत चलिए। और मिला पांडे को गाओ जो लोकगीत तोमर जी के संग फोन लगाने।

0: हेलो लोकरंजन।
1: नमस्कार भैया, हम बाबू यादव बोल रहे थे बनारस से।
0: कार्यक्रम में स्वागत है आपको बाबू भैया।
1: धन्यवाद भैया आपके। और आज भैया मैं जयंत विश्वकर्मा का एक गाना हुए लोकगीत।
0: तो आप कहाँ आज के कार्यक्रम में सुन रहे हैं बाबू भैया जयंत विश्वकर्मा को गाओ लोकगीत, अपन खाम सुनवा रहे हैं। और बताओ काहूत रहा?
1: बस भैया दुकान पर ही बैठक लगी है, उसका ध्यान आ गया कि फोन लगा दें और लग भी गए।
0: दुकान कहाँ है की है?
1: जनरल स्टोर का।
0: कहाँ? बनारस खास में के कोई आसपास दुकान देहात में है?
1: नहीं नहीं भैया, सारनाथ प्रॉपर में।
0: सारनाथ से बोल रहे हैं आप?
1: जी भैया।
0: आपकी रोजी रोटी, आपको व्यवसाय, आपकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, यही शुभकामना देत भाई आपको सुनवा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा को गाओ जो लोकगीत। फोन लगाने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।
2: हाँ।

0: हेलो लोकसकार साहब,
1: जय जय सीताराम की।
0: मुझे लोकगीत सुनना है।
1: अपनो परिचय दे दो पहले सारे श्रोतन के लाने।
0: सुरनपाल से गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील क्वाद जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
1: गुर्जर भैया, आपका मैथिली शरण तिवारी की राम राम पहुँचे, अब अपनी पसंद बतावा जाए।
0: लक्ष्मी त्रिपाठी के आवाज में कोई गीत सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज में अपन का हम गीत सुना रहे। और क्या हो रहा हो सुरेंद्र भाई?
0: आराम कर रहे हैं थोड़ी दोपहर में।
1: चलो बड़ी अच्छी बात है,
0: रेस्ट लेने से नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और क्या,
1: बिल्कुल सही बात कही सुरेंद्र भाई आपने। जा और परिवार के का कैसे हाल चाल है?
0: सब बढ़िया है, आनंद है आपकी कृपा से सब। बाल बच्चे सब खुशी है, एक लड़का है, एक नाती है, एक पंती है।
1: अरे पंती भी है?
0: हाँ जी।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपने काफी अच्छी चीजें जीवन में एक्सेप्ट कर ली भाई,
0: तो ईश्वर की कृपा है साहब।
1: जीवन को एक सुखद अनुभव हो जब व्यक्ति पीढ़ी का भी अपने आंखों से देख ले। हाँ। समझ जाओ उन्हें बहुत पुण्य करे कहा है जीवन, तब उजा चीज देखने मिलत है।
0: सही बात है आप।
1: चलो तो जो आपके पुण्य फलीभूत हो आपके जीवन में और घर के संग तमाम खुशियां मनाओ। चलो नहीं, आप उनको स्नेह हम उनके ऊपर है और भगवान को आशीर्वाद आप पे है और भगवान को ये आशीर्वाद का स्वीकार कर

0: अबे आप अपने रेडियो सेट पे ट्यून करे हो मीडियम बीप 444.4 यानी 675 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी को छतरपुर केंद्र। ई केंद्र से अबे आप आनंद ले रहे हो कार्यक्रम हेलो लोक रंजन को, जो कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र पे तैयार करके अपन की सेवा में प्रसारित करो जा रहा है। ई कार्यक्रम को प्रसारण आज की भांति हर शनिवार की शाम 7:20 से रात्रि 8 के मध्य आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ग्राम सभा के अंतर्गत करो जात है। अब सुने साथियों ई कार्यक्रम को अगलो फोन। हेलो लोकरंजन।
1: नमस्कार तिवारी जी।
0: जय जय सीताराम की मित्र।
1: ग्राम लोहेड़ी जिला महोवा से जयपाल यादव बोल रहे हैं सर जी।
0: हाँ जयपाल भैया।
1: सर कैसे हैं आप?
0: आपको स्नेह है, आपको अपनत्व और प्रेम भरो जो संवाद जो हमारे संगे हो रहा है
1: जी जी,
0: इको आनंद है।
1: ऐसा ही आनंद बने रहे। और आकाशवाणी छतरपुर से ग्राम सभा में लोक मंजली प्रत्येक शनिवार को ऐसे ही सुनने को मिलता रहे।
0: जब तक आप और उनको स्नेह की डोर इस प्रकार से जुड़ी रहे तब तक इस कार्यक्रम में कोनो व्यवधान ना है, ऐसा हमारा विश्वास है। बता दो जाए आज के कार्यक्रम में किको गाँव कौन सो लोग सुनने?
1: आज सर मैयादीन पाठक जी का एक बात मोरी सजनी।
0: मैयादीन तिवारी नाम है इन कलाकार को।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, काफी दिनों से सुनने को नहीं मिला, गीत सुनने को मिल जाए तिवारी जी को तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: हर हाल में आपका जो चेतावनी हम सुनवाई मैयादीन तिवारी की गाई भाई
1: जी सर।
0: और क्या हो रहा हूँ जयपाल भैया?
1: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही तो उसमें खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं सर, ताकि गरीबों कड़ाके की धूप पड़ रही है कम से कम वो भूखा ना सोए, तो उसी वितरण के उसमें लगे हुए हैं सर।
0: इकलौते

0: पात्रता का चाहना है?
1: पात्रता ये है कि 2 लाख लेकर के ऊपर का नहीं होना चाहिए, फोर व्हीलर ना हो, उससे अति गरीब हुए जिनके कोई नहीं है, जैसे कोई विधवा है या कोई परिवार में सदस्य नहीं है, तो ऐसी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है।
0: अच्छा, इसमें जो तो नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के भोजन खजा लाभ?
1: ना ना ना, इसमें सभी है उसमें।
0: चलो, अब बहुत अच्छे और बहुत पुण्य को काम कर रहे हैं, भली शासन के माध्यम से आप कर रहे हो।
1: जी सर,
0: तो जो काम कर चलो और हितग्राही भोजन का लाभ पहुंचाओ। चलो और सुना, चलो मैया दीन तिवारी को गाओ जो लोकगीत चेतावनी जी के लाने पर फोन लगाओ है। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल भैया।
2: हेलो लोक रंजन।
0: बिल्कुल भैया
2: जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरेखा सिकरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। और राजी आपको नाम जानबो चाह।
0: हम मैथिली शरण तिवारी बात कर रहे हैं आपसे।
2: जी जी जी जी, आदरणीय मैथिली शरण तिवारी जी को मेरा सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
0: जी नमस्कार, अपनी पसंद बता रही जाए आज के लोकरंजन में किको आप कौन से लोग सुनने?
2: सर जिनको सुनवा दे, जिन कलाकार की आवाज में लोकगीत।
0: चलो ठीक है, आपकी आज्ञा भी हमारे साराखंड पे रही।
2: और सर जी, जब आप कार्यक्रम पेश करते हैं और आपकी बातचीत और श्रोताओं की बातचीत सुनकर हमारा दिल गदगद हो जाता है।
0: चलो तो एक गदगद में एक बात और बताऊ। चलो, हमें 10 मई का मातृत्व दिवस है, मदर्स डे के तौर पर 10 मई मनाई जाता है। माँ को जीवन में क्या महत्व है राजू भैया?
2: भाई साहब, माँ है तो सब कुछ, अगर माँ नहीं तो कुछ नहीं।
0: चलो, विद्वान ने कही है कि ईश्वर खां सबको देख नहीं सकत और ईश्वर सब जगह पहुंच नहीं सकत।
2: जी,
0: तो अपनी कमी पूरी करने के लिए उन्हें माँ के तौर पे और पिता के तौर पे 2 दूत अपने पहुँचाए हैं धरती पे।
2: जी
0: जी, में माँ को स्थान विशेष है।
2: कुछ माँ के लिए पर 2 लाइन कहना सर जी।
0: स्वागत है।
2: जिनकी रोशनी काम करने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिसके नाम की तकलीफ तक नहीं होती जिस घर में, उसी घर को सारी उम्र सजाने में निकल।
0: वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है आपकी। जा यही अभिव्यक्ति खां स्वीकार करत भाई सुनवा रहे हैं अपन का। हम मैया दीन तिवारी की गाई चेतावनी जयपाल यादव के संगे सुनो और गीत को आनंद लो। फोन लागो, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया।

0: मंजरीन तिवारी की गाई जावे आप चेतावनी सुन रहे थे और ये गीत की रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी होने के कारण इसके ध्वन्यांकन में थोड़ी कमी आ गई है और जो गीत स्पष्ट आप नहीं सुन पाए इसको हमें खेद है।
1: ग्राम बापुर छितीपुर ग्राम पंचायत छितीपुर तहसील करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश सरनाम सिंह रजक वारी जी राम राम।
0: जय जय सियाराम की मित्र, कैसी चल रही जनगणना?
1: बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बची है, पड़ गई।
0: जनगणना करत में कोई परेशानी तो नहीं गई?
1: नहीं सर जी, बहुत सब लोग बहुत साथ दे रहे हैं सर जी।
0: अच्छा, और ऑनलाइन फीडिंग में?
1: नहीं कोई दिक्कत नहीं सर जी, एकदम सर्वर रुका था थोड़ी, आपसे बढ़िया चल रहा है।
0: चलो बड़ी अच्छी बात है
1: सर जी। तीन चीजों का व्यापार नहीं हो सकता है, सपनों का संसार, बड़ों का आशीर्वाद और माँ बाप का प्यार।
0: आपने माँ बाप की बात करी सरनाम जी।
1: जी
0: माता जी हैं?
1: बिल्कुल, पिताजी खत्म हुआ, माता जी हैं।
0: माता जी के परछाई में पिताजी को भी आपका स्वरूप देखने मिलत हुई है?
1: बिल्कुल श्रीमान जी।
0: माँ को का महत्व है जीवन में?
1: सर जी माँ तो सब कुछ है।
0: माँ की कौन सी चीज आपका सबसे अच्छी लगत?
1: जो भी करना सच्चाई से करना और सच्चाई का साथ देना, वो समझाते उन्हीं के पंख चिन्हों पे निकलती हम तो।
0: अच्छा, हमारो मानव है कि मताई शब्द
1: जी श्रीमान जी
0: अपने आप में परिपूर्ण है। जो शब्द माँ जोन भी देवी के संगे, जोन स्त्री के संगे, जोन महिला के संगे जुड़ जात है, वे सब देवी अपने आप में आदरणीय, सम्माननीय और पूजनीय हो जाती हैं।
1: बिल्कुल सर जी, बिल्कुल।
0: कल 10 मई का पूरे विश्व मदर्स डे के तौर पे अपनी अपनी पूज्य माता जी का याद कर है। विश्व की संपूर्ण मातृशक्ति का हमारी तरफी से बारंबार नमन।
1: बिल्कुल।
0: आपकी माता जी का भी प्रणाम सरनाम भैया।
1: बिल्कुल।
0: आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दो जाए की को लोग सुनने आज आपका?
1: सर जी आप सुना रहे हैं सपनतला राजपूत की आवाज में, कौन भी सुना रहे, बढ़िया सा लोकगीत सुना देना।
0: चलो इनको बढ़िया सो गाओ लोकगीत, अपन खाम सुनवा रहे हैं
1: जी श्री।
0: तो इनको लोकगीत सुना, चलो अपनी माता राम की खूब सेवा करो मन से, उनको खूब आशीर्वाद प्राप्त करो और पूरे गांव की जनगणना में अपना योगदान देते चलो, राष्ट्र को जो महत्वपूर्ण काम है। और सुनत चलो शकुंतला राजपूत को गांव जो लोकगीत जी के लाने पर फोन लगा है। धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
2: हम श्री राम रेडियो सतर संघ भवानी कलां पाठक बोल रहे।
0: हाँ पाठक जी बोलो।
2: एक ठगवा लोकगीत सुनने
0: की को
2: शकुंतला राजपूत की आवाज सुनवा दो। कौन
0: शकुंतला राजपूत की आवाज सुनवा दे भी, और कहा हो रहा हो
2: दोपहिया जल्दी जो घर आएंगे हैं।
0: और बाल गोपालन की मताई कहाँ गई? अरे हमारी भौजाई कहाँ गई भैया?
2: अरे वे अंदर हैं।
0: अच्छा, और बाल गोपाल?
2: अब इन्हें कर गए कहूँ, आओ अब सो रहे थे पहला।
0: अच्छा अच्छा, चलो 10 तारीख का मातृ दिवस है कि नहीं?
2: 10 मई का।
0: आओ 10 मई का। तो अपने बच्चन की तरफ से और हमारी तरफ से हमारी भौजाई का ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हो।
2: आओ आओ।
0: और एक टॉफी खवा रही हो मीठी सी?
2: नहीं नहीं जरूर।
0: पक्की रही?
2: पक्की।
0: चलो तो फिर यही मिठास के संगे संगे सुनो, चलो सरनाम सिंह रजक के संगे शकुंतला राजपूत को गाओ जो लोकगीत।
2: जय राम जी पहुँचे।
0: जय राम।

चेतावनी लोकगीत के संगे आज के कार्यक्रम हेलो लोकरंजन को समय पूरा हो रहा है। कार्यक्रम के अंत में एक बार विश्व की संपूर्ण मातृशक्ति का हमारी तरफ से बारंबार नमन। स्वीकार करो मित्रों अपने सखा मैथिली शरण तिवारी की राम राम।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: गठियावाद, गठुआवाद और घुटनों के दर्द से आप लंबे समय से पीड़ित हैं तो निजात पाने के लिए संपर्क करें वैद्य रामचरण प्रजापति, खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। फोन नंबर है 9993285161। अपने दर्द का उपचार पाइए वैद्य रामचरण प्रजापति से।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
4: विराम के बाद कार्यक्रम ग्राम सभा में पंचो अपन सबको फिर से स्वागत है। एक बात तो हम अपन से कह भी कि हमें अपन सबसे अथाह स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहो है। अपन सबको जो प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है और अपन सबके प्रेम का हम हमेशा अपनी छाती से लगाए रहे भी। फिर भी छाती में लगावे की जब बात आई है तो हम अपन से कछु बातें और कर भी। कोनो भी चीज या कोनो भी बातें छाती पे रखबे से मतलब है कि उ बातन की अपन बहुत अधिक सुरक्षा करें या उ वस्तु का अपन बहुत सावधानी से हमेशा अपने पास रखे रहे। वैसे एक कहावत और है, छाती पर मूंग दलबो, लेकिन छाती पे मूंग दरवे से और छाती पे धरे रहवे में बहुत अंतर है। लेकिन कहूं कहूं छाती पे धरे रहवे की जा परिभाषा छाती पे मूंग दरवे का ही सिद्ध हो जात है। तो हम तो यही कह भी भैया हरो कि छाती पे मूंग न दरो, लेकिन कोनो भी अच्छी चीज अपनी छाती पे धरे रहो, समय समय पे ऊखा गुनत भी रहो और उसे इतनो भी मुंह ना बांध लो कि अपन और दूसरी तरफ भी कोनो ध्यान न धरे। यही से हमोरन से अपन सब बहुत स्नेह रखो, लेकिन हमोरे अपन सबसे जोन बातें करत हैं उन बातन में जोन बातें सार की हो उन बातन का अपने जीवन में भी उतारत चलो, तभी सिद्ध हुए के आप हमारी बातें अपनी छाती पे धरे फिरत हो। जो स्नेह जो प्रेम हमेशा हम अपने छाती पे रखे रहे भी, लेकिन उके पहला अबे समय है कि अपन के सामने हम रखें वे कार्यक्रम जोन कल की ग्राम सभा में अपन सबका हमें सुनावने हैं। कल ग्राम सभा में बुंदेली धारावाहिक अटकन चटकन को पुनः प्रसारण हुई है।

इके अलावा रघुवीर यादव से उनके बुंदेली काव्य पाठ को आनंद भी अपन ले हो और संगे संगे आज की सीख में बात हुए छाती फटत है ई विषय पे जो सब सुनबे के लाने अपन खा प्रतीक्षा करने पड़े कल के कार्यक्रम ग्राम सभा की। अभय आज्ञा दो अपने किशोरी भैया खां, स्वीकार करो हमारी, राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेब और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: कार्यक्रम सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देवाशीष प्रूस्ती, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: हम शुरू करना चाहेंगे देवाशीष जी आपसे। 11 वर्ष हो रहे हैं तीन योजनाओं को, जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसे आप कैसे देखते हैं, भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को ये कैसे मजबूत कर रहा है, और पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी?
3: आज 11वां सालगिरह है। दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है, जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है। इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनकी वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन कहनों के तहत बैंकों की जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस की तमाम शाखाएं, ये सभी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं। और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 10,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है। और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। का मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
2: अब इसका पूरा, अगर हम आपके पास आए और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या

0: जैसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना, जहां तक हम समझते हैं, इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है। और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
1: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई, और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है, और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी, और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 30% हो जाएगी, और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे। और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की, तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9 करोड़ 6 लाख लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक, तो आपको 1000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपकी नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो 3 बड़े-बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम 2 बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा 3रा बच्चा है, और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है, क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये 2 बच्चे तो रहेंगे आपके साथ, पर उन पे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये 3रा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है, और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं, और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
0: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, क्या कोई जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई आयु की है?
1: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते हैं।
0: देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं, आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं, और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में उन्हें ट्रस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी कि जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है। और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है।

0: एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2 लाख रुपए तक का है और जो बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड है, उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2 लाख रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है। वो बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस वित्तीय वर्ष में बचते हैं उनका प्रीमियम देना होगा। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से, एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं। इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए की जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी है लगभग 17 करोड़ है, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ 70 लाख है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जोड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, यहाँ क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती है और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
0: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट से सेविंग बैंक पासबुक है। और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर की पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में तो उनमें 1 लाख रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल की 20 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खाताधारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। वहां तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
1: मिस कपूर, आपके पास हम आना चाहेंगे, ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखते हैं इन योजनाओं का विस्तार और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हो तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो

0: अगले हम 5-6 साल में करेंगे. और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी. 8-8.5% की ग्रोथ उस पर 9% की हो रही है और भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा. सो AUM भी बढ़ेगा. सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है. क्यों? क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं. दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है. सो इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का. और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है.
1: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. सुर्खियों में

अभी आपने सरफरोश फिल्म का गीत सुना, जिसे आवाज दी थी अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने। और लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत।

अभी आपने अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में हकीकत फिल्म का गीत सुना। शब्द रचना थी नवाब आरजू की और संगीत दिया था दिलीप सेन समीर सेन ने।

अंजाम फिल्म का गीत आपने सुना अभिजीत की आवाज में, माफ कीजिए अनारी फिल्म का गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं अभिजीत की आवाज में अंजाम फिल्म का गीत।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने। और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए तराजू फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। शब्द रचना है इंदीवर की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय

0: को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने

0: कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पदों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंदपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्द ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुवादित हुए और पूरे भारत में खेले गए

करवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों न हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है, दोनों जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करते हैं। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग थी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोटवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग थी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक

नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितने जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मुझे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक

आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें भरी हुई हैं, अनगिनत सुर सुनाई हुई हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक

0: बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियाँ हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आप जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूँ कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं? उनकी चीजें अपनी चीजें आप उनके लिए बदलिए, लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो बहुत दौर देखा है आकाशवाणी का। आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगु थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं तो हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था, उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं। पूरा तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई फिल्म हो, लिटरेचर हो, पोएट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना। अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बचता था, क्या मतलब क्वालिटी है, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो मैं बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपनी ओर से ये जरूर मैं अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुने। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रही, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार थे सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था सर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे ओ अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवार से सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासीय हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे, भैया लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे

शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी में जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरित मानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ

और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरित मानस, भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि सबके लिए कुछ न कुछ है। ये थी पद्मश्री माधवी अवस्थी, सुनांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी दूरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोल

0: मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
1: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
0: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
1: ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
0: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां सात समंदर पार के हम हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
1: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुले।
0: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारी दुनिया को लेकर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में है और हमारे 11 ऑफिस जो है वो भारत के अंदर है प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान काउंसिल वो है 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर

0: कमांड भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं वो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में तो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से आईसीसीआर जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो आईसीसीआर स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एकल जुगबाया है। आंध्र स्टार अखबार मुझे भारत सरकार आईसीसीआर की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दीक्षा लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं आईसीसीआर के प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 2013 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना बीए रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और पीएचडी का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, क्योंकि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम आईसीसीआर के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और आईसीसीआर के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत के मुक्ति की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक चमक है विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती आंगन और उससे उतरा तेजियों का होना। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति है उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार

0: मेरा नाम श्वेता जाखल है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो इसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वैसे मैंने स्टाफ एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मैंने उनसे डिस्ट्रिक किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट पर, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर की वजह से ही, वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें इसमें वेट होना चाहिए कि हम ये कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो मोस्टली जो अपना बीटूबी में एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ, बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर है। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर, फ्लोर कल्चर, हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें देखा बेटी की हवेलियाँ मैंने बनाई है, उससे भी मैंने गोलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसीव देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊंगे। हमेशा मेरे ही कोशिश होती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भागलपुर हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज ए मीन्स लेके चलूँ और फिर इसी में काम करूँ। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोग भी उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला था कि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भागलपुर, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजेंट को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ की साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा एमएक्स रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है हमेशा एमएक्स से बनी हुई पेज। जब भी मुझे एक पेज बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इसमें जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं और बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती है, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध के पवित्र शरीर धारकर उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जिस इतिहास में सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन। आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लगता, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सहल जाए। और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है। वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से बचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई

0: लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
1: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट है वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशन जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्री उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज में बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सबसे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लोही से जांचकर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्या, बौद्ध दर्शन पर संवाद
0: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन।

0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
1: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग गोल पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहां लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है। एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूं कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्धि के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं कांजन।
0: और मैं मित्रा। बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद है और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. कानू, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा से पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन।

0: कार्तिक का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित शांता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित मदन सोपोरी के सानिध्य में सुफियानी घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। We bring to you a Santoor recital by Rajkumar Mazumdar. Rajkumar Mazumdar is one of the most versatile Santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the Santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Mazumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the Santoor under the guidance of the legendary Santoor maestro, Pandit Bhajan Sopuri of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Mazumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
1: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्यमा रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Mazumdar begins his Santoor recital with Raag Jansammohini, presenting Alap, Jor and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Taal and Madhya Lay. Drut composition is set to Teen Taal.

0: राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसमोहनी। राग जनसमोहनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आगोदी। मध्य में वृत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसमोहनी। Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi, Madhyamay, and Jit composition is set to

0: संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उदित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Simple Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक केटनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्न वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख श्री जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अधिकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम बोट ICGS अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बोट तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबू को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपने सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री वेहिकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो।